एसी टी देसी पे आज आप सुनेंगे बहुत सारे मिक्स किए हुए गाने, स्पेशली क्यूरेटेड बाय योर ओन देसी आर जे विकास ऑन एसी टी देसी, और जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 इन कैनबरा, ओनली ऑन 2XXFM 98.3 पीपल पावर्ड रेडियो। और ये जुलाई का मंथ है, ये स्पेशल मंथ है, बिकॉज इसमें बहुत सारी ऐसी अपीयरेंसेस हुई हैं जो 2XXFM को लेके, जो मेरे बर्थडे को लेके, जो एसी टी देसी का पहला शो हुआ था वो भी जुलाई में हुआ था, और इस महीने मैं मना रहा हूँ 7th ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ एसी टी देसी। तो सुनिए ये गाने और चलिए मेरे साथ इस सेलिब्रेशन पे, क्योंकि आप मेरे लिसनर्स इस जर्नी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम, किंजो।

आप सुन रहे हैं एसीटी देसी पे मिक्स सॉन्ग का सफर, जो 7 सालों को सेलिब्रेट करता है एसीटी देसी के, क्योंकि जुलाई का महीना वो है जब जुलाई 2019 में एसीटी देसी पहली बार ब्रॉडकास्ट हुआ था कैनबरा में।